0: the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: जी टीवी HD पर देखिए साहस और जज्बे की नई कहानी
4: जगदात्री,
3: जिसमें माँ गौरी की सरलता बसती है।
4: माला ले आना लाइया जी।
3: वो वक्त आने पर महिषासुर मर्दिनी भी बन जाती है।
5: टीम गेट रेडी फॉर द एक्शन।
3: जिसके शांत स्वभाव में भी छिपा हो शेरनी का रूप, वो है जगधात्री। देखिए रोज रात 8:30 जी टीवी HD और Z5 पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT 394।
6: इट वॉज जस्ट अनदर डे, अ फेमिलियर ड्राइव थ्रू फेमिलियर कंट्री। But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
0: 7 stations. 1 podcast. 1 mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales at leicamedia.co.uk. Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

0: ये है
1: लाइका रेडियो.
2: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
3: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर.
2: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियल, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
3: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन.
2: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स.
3: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी.
2: एंड द बेस्ट पार्ट, टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000.
3: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
2: High appreciation.
3: In Dubai.
4: Packed for the trip? Gifts? Passport?
5: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
4: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
5: Simzy?
4: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
6: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
7: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
8: This is the largest commercial Asian radio network in the UK.
9: Subscribe to the Leica Radio YouTube channel by searching Leica Radio.

0: Hacker Radio.
1: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें. लाइक आवर रेडियो सेल्स ऑन 0116-471-0697 या ईमेल करें sales@lykamedia.co.uk.
0: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Lyca Radio.

तम नीच हुकुम लिख दुख सुख पाइए, एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा भुआइए। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोए, नानक हुक्मे जे बुझे।

सो मैं विसर ना जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जानी है नाल चले सब कोए। चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जागले, जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछे के। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे। तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे। सुनिए।

मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोहन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहावी।

हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार।

जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए। राती रुती छित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान।

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून.
2: Carotino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Carotino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores.

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में मिस्टर नटरलाल फिल्म से था ये गाना, जिसमें म्यूजिक था राजेश रोशन का, और उससे पहले वारिस फिल्म का गीत जिसका म्यूजिक दिया था उत्तम सिंह ने, और आपने दो बैक टू बैक गाने सुन लिए हैं। और लीजिए, इन दो गीतों के साथ आज के द ऋतु शर्मा शो की शुरुआत हो गई है। तो आपको बताती चलूं कि इस शो में अब से लेकर दोपहर के एक बजे तक मैं ऋतु शर्मा आपके साथ रहूंगी, और जैसा कि हमेशा होता है सुनवाऊंगी एक नहीं दो नहीं ढेर सारे बॉलीवुड क्लासिक्स, और उसके साथ साथ सैटरडे के दिन शो में जो कुछ भी होता है वो आज भी होगा। लेकिन सबसे पहले आप सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम, और आपको बता दें कि ये है लाइक अ गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर, एंड लाइक अ रेडियो इन मिडलैंड्स, और हमारे बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सब एक ही बात कह रहे हैं कि ऋतु देख लो मौसम बदल गया। जी हाँ, लास्ट वीक से बरसात की शुरुआत क्या हुई कि बस समझ लीजिए हर रोज थोड़ा थोड़ा करके बारिश हो ही रही है, और मौसम में भी कुछ ठंडक है। ये ठंडक तो हमें अच्छी लग रही है, लेकिन समर में इतनी सारी बारिश, क्या किया जाए, कुछ नहीं कह सकते। बस मौसम को एंजॉय कीजिए, ईश्वर ने जो दिया है उसे एंजॉय कीजिए, खुश रहिए और हमारा साथ यूं ही देते रहिए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आपको बताते चलें कि आज 1 pound आपको देगा 126.5 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर आपको हमेशा की तरह करवाना होगा वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप के थ्रू। और हाँ, एक और बात बता दें कि आप 75 pound का वाउचर एवरीडे विन कर सकते हैं व्हेन यू सेंड ओवर 1000 pounds, एंड ऑल्सो अ 1 gram गोल्ड कॉइन every week when sending over 2000 pounds. Terms and conditions do apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Lister, itna sasta deal dekha hai kabhi?
3: Nahi, to chalo Falcon Cash and Carry.
2: Samara Black Tea, 1 kg, 3.99. Elephant

0: सारे कुमार शानू के फैंस के नाम पर जाता है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का ये गाना, जिसमें कुमार शानू का साथ दे रही थी लता मंगेशकर। वन ऑफ माय फेवरेट, या कहूँ हम सब का फेवरेट गाना, जिसमें म्यूजिक था जतिन ललित का। और जैसे ही गाने आपको सुनवाती रहूंगी एक बजे तक, आप बस मेरा साथ देते रहिए, और आप मेरा साथ दे रहे हैं क्योंकि आपके मुझे ढेरों मैसेजेस मिले हैं। तो चलिए डालते हैं आपके मैसेजेस पर एक नजर।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो बिल्कुल आप अपना मनपसंद रेडियो स्टेशन सुन रहे हैं, और आज के मैसेजेस की शुरुआत सबसे पहले की है हमारे हिमांशु पटेल जी। आपने प्रोग्राम सुन रहे हैं, स्वागत है आपका। रुखसाना अफजल हमें सुन रही हैं रॉचडेल में। गुड मॉर्निंग रुखसाना, स्वागत है आपका इस शो में। तोची पनेसर जी स्वागत है, भरत गंगाराम जी आपका भी स्वागत है, और कहते हैं मौसम का मजा ले रहे हैं आपके यहाँ से बजने वाले गीतों के साथ। क्या बात है, इससे अच्छा और क्या काम हो सकता है वीकेंड पर, खास तौर पर। स्वागत है आपका, थैंक यू। स्वागत है सहर आपका। एंड विजय गुडोरी जी, सटन में आप हमें सुन रहे हैं, और हमेशा की तरह आज भी आपने बहुत ही सुंदर विचार हमारे साथ शेयर किया है, और इसमें लिखा है कि किस्मत का लिखा सब कुछ सहना पड़ता है, किस्मत का लिखा सब कुछ सहना पड़ता है, क्योंकि परेशानियां बेची नहीं जा सकती और सुकून खरीदा नहीं जा सकता। बस यही कहूंगी कि जीवन में आपके परेशानियां ना के बराबर हो और आपका जीवन सुकून से भरा हो। इसी विचार के साथ आगे बढ़ते हैं। राजीव पटेल जी, थैंक यू सो मच। क्या कर रहे हैं आप, टीवी पर क्या देख रहे हैं? आपने फोटो खींचकर भेजी है, और साथ ही साथ आप हमें भी सुन रहे हैं। चलिए स्वागत है मिस्टर शेख, बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए। एंड राजेश जी कहते हैं हमारी नमस्ते, सुप्रभात, और आपको शनिवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरा हफ्ता बारिश, हवा और ठंडे वेदर वाला रहा, और देखिए वीकेंड भी ऐसा ही हो गया। लेकिन आपने लिखा है कि बाहर का मौसम जो भी हो, हम अपने अंदर का मौसम खुशियों से भरा रख सकते हैं, और आप मेरा साथ दे रहे हैं। थैंक यू सो मच, और आपका विचार बहुत ही सुंदर है। महेंद्र बजारिया जी, अर्जन जी, हमारी मालती जी आज बहुत दिनों बाद हमारे साथ जुड़ी हैं, और आपने लिखा है कि आप बीमार थी, हॉस्पिटल में थी, क्या हो गया था आपको, मुझे तो खबर ही नहीं थी। उम्मीद है अब आप ठीक होंगी, सब कुछ अच्छा होगा, और बहुत खुशी है कि आज आपने इतने दिनों बाद मैसेज भेजा है और आप हमारा साथ दे रही हैं। तो बस ईश्वर से यही कहती हूँ कि आप जल्दी से पूरी तरह ठीक हो जाएं, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। संध्या भावसा जी, थैंक यू। हरीश खत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जासू जी, प्रज्ञा जी, हरीश रुदा, एजाज जी, चश्म से निर्मला जी, सुरजीत जी, रोशनी, अनिल सोना वियाना से, हमारे गिरीश जी भारत से, सलमा जी और मितुल पटेल, एंड ऑफ कोर्स हमारी फरजाना। और ये मैसेजेस बढ़ता ही जा रहा है सिलसिला मैसेजेस का, इसलिए आगे बढ़ जाती हूँ। और मौसम थोड़ा रोमांटिक सा है, तो एक और रोमांटिक सा गीत मेरी ओर से आप सबके लिए।
1: ये है Like a Radio Tasty Track of the Hour, brought to you by Coca Noodles.

0: तो भाई रोमांटिक सा मौसम है और ये बारिश वाला मौसम मुझे तो रोमांटिक मौसम लगता है। और हमारे मितुल पटेल जी का कहना है कि उन्हें भी बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है। आप लिखते हैं आई लव रेन, हाँ मुझे भी अच्छी लगती है अगर आपको परेशान नहीं कर रही। और ऐसे रोमांटिक से मौसम है, रोमांटिक गाने मैं आपको सुनवाती ही रहूंगी। ये गीत आंखों आंखों में फिल्म से लिया था जिसमें म्यूजिक था शंकर जयकिशन का। और आज ऐसे ही और भी बहुत सारे गाने सुनवाने वाली हूँ प्रोग्राम के अगले हिस्से में, क्योंकि आज हमारे बॉलीवुड के एक बहुत ही अच्छे दिल वाले एक्टर जिनके बारे में सभी सिर्फ अच्छी और सिर्फ अच्छी बातें करते हैं, उनका नाम है सुनील दत्त। आज सुनील दत्त की बर्थ एनिवर्सरी है, इसलिए आज की यादें में हम उन्हें याद करेंगे, उनके बारे में कुछ बातें करेंगे और उनकी फिल्मों के गाने भी सुनवाऊंगी। याद रखिए प्रोग्राम के अगले हिस्से में। और आगे बढ़ने से पहले सुखी आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं। हिमा, थैंक यू फॉर योर मैसेज। थैंक यू निर्मला जी, प्रदीप सोलंकी जी एंड थैंक यू जैस जी एंड थैंक यू प्रीति जी, बेल्जियम में हमारा साथ दे रही हैं एंड संध्या भावसर ऑफ कोर्स। चलिए अगला फिर से एक और रोमांटिक गाना मेरी ओर से आप सबके लिए।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स, गुडनेस इन एवरी बाइट, ट्राई इट टुडे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
2: Leica Radio. Across the Leica Radio network, this is Ritu Sharma.

0: प्यार है,
1: अरे बाबा है,
0: तुमको मुझसे प्यार है,
2: लीजिए एक और बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक सा गाना आपने सुना आपके मनपसंद रेडियो से, जिसे लिया था फिल्म आराधना से। और आपके मैसेजेस लगातार मिलते जा रहे हैं, गीतों को पसंद कर रहे हैं, क्या बात है। भानु जी थैंक यू, आपने हमें बताया है कि आज नेहा कक्कर का भी बर्थडे है। बिल्कुल है नेहा कक्कर का बर्थडे और मुझे उनके बहुत सारे गाने बहुत पसंद है, लेकिन उन गानों को मैं यहां नहीं बजा सकती, अपनी कार में तो बजा सकती हूं। तो चलिए नेहा कक्कर को बिना गाना बजाए हैप्पी बर्थडे कह देती और कोई पुराना गाना हम उनके नाम कर देंगे। इनफैक्ट अगला गाना हमारी ओर से नेहा जी के और उनके फैंस के नाम पर। लेकिन उससे पहले बता दें कि संध्या जी का कहना है कि यार वीकेंड पर ऐसा मौसम हो जाता है और हम जो प्लान्स बनाते हैं वो सब चौपट हो जाते हैं। वैसे अक्सर नहीं होता है, अगर हल्की फुल्की बारिश है तो चलता है, लेकिन अगर तेज बारिश काले बादल आ जाए तो यस ऑफ कोर्स, अगर आपका कहीं आउटडोर में जाने का प्लान है तो फिर तो उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता, बस अफसोस के अलावा।
3: Holiday breaks are brought to you by South Old Travel.
2: तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको याद दिला दें कि कहीं घूमने जाने का प्लानिंग बना रहे हैं तो याद रखिए साउथ हॉल ट्रैवल, उन्हें कॉल कीजिए 0208-574-8410 पर या फिर विजिट कीजिए साउथ हॉल ट्रैवल पर, आपके ट्रस्टेड ट्रस्टेड ट्रैवल एजेंट है, 40 सालों से आपकी सेवा कर रहे हैं, जिन्होंने ब्रिटिश ट्रैवल अवार्ड भी जीता है। और आप उनके साथ न सिर्फ फ्लाइट्स बल्कि होटल्स भी, यानी कि पूरी डील बुक करा सकते हैं और सब कुछ एट ऑल प्रोटेक्टेड है।
3: Holiday breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Is Ritu Sharma.
4: Cinderella is back for 2026. Beck Theatre Hayes, 22nd and 23rd of July. Arts Depot Barnet, 17th and 18th of October. Theatre Royal Stratford East, 20th to the 31st of October. With smash hit music by the hitmaker PBN, Cinderella is guaranteed this see panto fun for all the family. And with tickets starting from £15, click rivcotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Cinderella goes back into the Bollywoods.
5: Radio partner, Leica Radio.
6: Are we there yet?
7: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
6: Relax, I've booked the Uber already.
7: How? My roaming isn't even working yet.
6: I switched to Simsy before we left London.
7: Simsy? Since when are you the tech expert?
6: Since I decided I want a stress-free holiday.
8: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
9: T's and C's apply.
10: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
11: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
10: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
11: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
10: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
11: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
10: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCNPRA.
12: Location, location, location.
13: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
12: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
13: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
12: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
13: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
12: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
13: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
12: high appreciation
13: in Dubai.
14: Har case mein kam se kam ek witness to hota hi hai. Murderer khud.
15: Kolkata mein, humare gharon ke aas paas ye sab ho raha hai. I'm Dr. Sandeep Chakraborty, owner psychiatrist.
16: One more gruesome murder.
14: Dono victims 20s mein, dono female.
17: He's
14: is not going to stop. There are many more in danger.
1: खाखरा क्रंच, भाखरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
17: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
1: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
18: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ। आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे, जहां मळशे शांति, भक्ति अने आनंद, अने साथे आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो। डिपार्चर 5 सितंबर ना। मंत्रा हॉलिडेज कॉल करो 02037736333। मंत्रा हॉलिडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।
3: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
15: अबीरा, यहाँ से मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। क्या तुम मेरे साथ?
14: जहाँ तुम
15: ये फैसला मेरा था, भुगत तुम रही हो। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ।
14: अगर हम साथ हैं,
15: तो जिंदगी की हर मुश्किल को हरा देंगे।
19: खुशियों को लगी वक्त की नजर, कैसा होगा अबीरा अरमान का नया सफर?
20: ये रिश्ता क्या कहलाता है? मंडे टू संडे 7 PM ऑन स्टार प्लस, अवेलेबल ऑन स्काई 705, वर्जिन मीडिया 803, EE 392 और TV, प्रेजेंटेड बाय travelup.com, पावर्ड बाय नेटको फूड्स।
21: 40 मिलियन पीपल लिसन टू कमर्शियल रेडियो ईच वीक, दैट्स 80 मिलियन इयर्स, गिव अ टेक। Amplify your advertising at radiocentre.org.
3: Did you know you can advertise on this station, Leica Radio Midlands, plus our other offerings, Leica Radio Greater London, Leica Gold Greater London, and Leica Radio Greater Manchester. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0116 471 0697 or email sales at leicamedia.co.uk.
22: Aaj ka weekend aur bhi suhana. The Ritu Sharma Show mein every weekend 10 AM to 1 PM on Leica Gold Radio, Leica Radio Greater Manchester and Leica Radio Midlands par.

0: मोहब्बत की दास्तां तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: माँ को बोल कि जल्दी मच्छी लेकर आए।
2: हो अपनी माँ को बोलो मैं लेकर आऊंगा।
3: नाम परशुराम, अधर्म का करता हूँ काम तमाम।
1: अरे कहाँ हो तुम?
2: हो आलो आलो।
3: परिवार उसके लिए चारों धाम, बाहर वो है परशुराम।
4: Watch Mr. and Mrs. Parshuram Monday to Sunday at 7:30 PM only on Utsav Plus. Sky Channel 705, Virgin Media 803 and EE392.
5: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
6: The Ritu Sharma Show, featuring classics non-stop with Ritu Sharma on Leica Radio.

0: शमशाद बेगम मोहम्मद रफी साहब की आवाज में मदर इंडिया फिल्म से था ये गाना, और उससे पहले महेंद्र कपूर की आवाज में हमराज फिल्म का गाना। और दोनों ही फिल्में सुनील दत्त के करियर की सुपरहिट फिल्म्स हैं, और आज हम सुनील दत्त को ही यादें में याद कर रहे हैं क्योंकि आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। आज ही के दिन यानी कि 6 जून 1929 में सुनील दत्त जन्मे थे, और हमारी फिल्म इंडस्ट्री के एक दिग्गज अभिनेता, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक सम्मानित पॉलिटिशियन थे। उन्होंने अपनी अदाकारी और अपने किरदारों से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर एक अमिट छाप छोड़ी, और इसीलिए देखिए इतने सालों बाद आज भी उन्हें पसंद किया जाता है और उनके गीतों को बड़े ही प्यार से सुना जाता है। बचपन में भारत का जब बंटवारा हुआ था उस दौरान उनका परिवार भारत आ गया था, और उन्होंने शुरुआत में बहुत ही तंगी के दिन गुजारे, यानी कि बचपन बहुत ही तंगी में बीता, सब कुछ छोड़कर आना पड़ा था। उन्होंने मुंबई से पढ़ाई की और अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए उस जमाने की जो बॉम्बे बेस्ट बसेस थी उसमें डिपो के क्लार्क के रूप में भी काम किया। लेकिन फिल्मों में आने से पहले रेडियो सीलोन, जो अपने जमाने का जाना माना रेडियो स्टेशन रहा, वहां पर वो एक बहुत ही पॉपुलर आरजे या रेडियो प्रेजेंटर भी थे, और जहां पर वो फिल्मी सितारों का इंटरव्यू लिया करते थे। और जानते हैं एक बार उनकी मुलाकात वहां नरगिस जी से भी हुई थी, लेकिन वो किस्सा बाद में बताऊंगी। बट फिलहाल आपको बता दूं कि रेलवे प्लेटफॉर्म उनकी सबसे पहली फिल्म थी जिससे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन असल पहचान उन्हें मदर इंडिया से मिली, जिसका गीत अभी आपने सुना, जिसमें उन्होंने बिरजू नाम के एक गुस्सैल यंग लड़के का किरदार निभाया था, और ये कैरेक्टर उनके करियर में एक मील का पत्थर साबित हुआ। और मदर इंडिया के बाद तो उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया, और आज ऐसी ही उनकी ही कुछ फिल्मों के गीत मैं आपको सुनवाने वाली हूँ। इनफैक्ट अगला गीत, जो शायद आपने काफी दिन से नहीं सुना होगा, सुनवाती हूँ आपको मोहम्मद रफी साहब और सुमन कल्याणपुर की आवाज में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आपको बता दें कि 1 pound के बदले में आज आपको मिलेंगे 126.5 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा वाई SBI ब्रांच ऑनलाइन और उनके योनो ऐप के थ्रू। लेकिन उसके अलावा बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इनटू विन 75 pounds वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 pounds एंड ऑल्सो अ 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 pounds। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app, or log on to leicaradio.com and listen via the website. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is Leica Radio.
2: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
3: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
2: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
3: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
2: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
3: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
2: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the SCMPRA.
4: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Leica Radio.
5: Frankie Goes to Bollywood is back. Dive into a breathtakingly colourful journey of romance, epic songs, spectacular dancing, with brand new songs by Bollywood hitmaker Hari Anand. This show-stopping musical celebrates ambition, transformation, and the power of owning your own story. From the producers of Britain's Got Bhangra and Surinderella, Frankie Goes to Bollywood comes to the Birmingham Rep, 10th to the 13th of June. For tickets and more info, click birmingham-rep.co.uk. Radio partner, Leica Radio. Ciao.

0: मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में फिल्म बेटा बेटी से लिया था ये गाना, जिसमें शंकर जयकिशन का म्यूजिक था और इस तरह की अनेकों फिल्मों का हिस्सा रहे थे सुनील दत्त, जिनके की गीत आज सुनवा रही हूँ, जिन्हें याद कर रहे हैं हम यादें में, क्योंकि आज है उनकी बर्थ एनिवर्सरी।
1: हैप्पी हलवाई ब्रिंग्स योर टेस्ट बड्स ओडल्स ऑफ हैप्पीनेस विद ऑथेंटिक गुलाब जामुन, रसमलाई, मोतीचूर लड्डू एंड मच मोर। विजिट happyhalwai.com।
0: इनके हिस्से में बहुत सारी सुपरहिट कहूँ या क्लासिक्स फिल्म्स हैं जिन्हें आपने देखा होगा, साधना, सुजाता, मुझे जीने दो, गुमराह, वक्त, पड़ोसन, हमराज। लेकिन एक और ऐसी फिल्म सुनील दत्त ने बनाई थी 1964 में, जिसका नाम था यादें, और इस फिल्म के कारण इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया। जानते हैं क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस फिल्म की एक खास बात थी कि पूरी फिल्म में केवल एक ही एक्टर यानी कि खुद सुनील दत्त थे, और एंड में सिर्फ कुछ सेकंड्स या मिनट्स के लिए नरगिस दत्त आई थी जो इनकी पत्नी थी, वरना पूरी फिल्म में सिर्फ अकेले सुनील दत्त थे। और ऐसी ये एक अनोखी फिल्म थी और जिसके कारण इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और एक और रोमांटिक सा गीत सुनवाते हैं इन्हीं की फिल्म से, जिसे आप सब सुनना चाहते हैं।
2: Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

0: एक बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म जिसकी कहानी जिसके गाने एक से बढ़कर एक, और आज सुनील दत्त की बात हो और इस फिल्म का गीत ना बजे ऐसा हो नहीं सकता। इस गाने को आप सबने एंजॉय किया है और आज ऐसे ही गाने ऐसी ही बातें कुछ बताने वाली हूँ सुनील दत्त के बारे में। इनफैक्ट मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक उनकी लाइफ से जुड़ा हुआ किस्सा। आपको याद होगा उनकी एक फिल्म आई थी मुझे जीने दो, जिसमें सुनील दत्त के साथ वहीदा रहमान भी थी, और ये जो फिल्म थी डाकुओं के जीवन पर आधारित थी और सुनील दत्त चाहते थे कि फिल्म पूरी तरह से असली लगे, इसलिए उन्होंने सेट लगाने की बजाय सीधे मध्य प्रदेश के चंबल के बीहड़ों में जाकर शूटिंग करने का फैसला किया। जानते हैं उस दौर में चंबल में मोहर सिंह, माधो सिंह जैसे खूंखार डाकुओं का राज था जिनसे पुलिस भी डरा करती थी। और एक रात जब शूटिंग चल रही थी क्या हुआ, जब एक रात सुनील दत्त अपनी पूरी यूनिट जिसमें वहीदा रहमान भी उनके साथ थी के साथ चंबल में एक गांव में ठहरे हुए थे, तो आधी रात को बंदूकों से लैस डाकुओं के गिरोह ने पूरे कैंप को घेर लिया। अब पूरी यूनिट डर के मारे कांपने लगी और सबको लगा कि अब तो बचना नामुमकिन है। लेकिन ऐसे माहौल में सुनील दत्त घबराए नहीं, क्योंकि सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। वो अपनी जान की परवाह किए बिना निहत्ते ही डाकुओं के सामने जाकर खड़े हो गए और उन्होंने उनके सरदार से बेहद सम्मान और शांति से बात की। दत्त साहब ने डाकुओं से कहा कि वो यहाँ पर उनका मजाक उड़ाने नहीं, बल्कि उनकी मजबूरी और उनके जीवन और उनके संघर्ष को पर्दे पर सच के साथ दिखाने आए हैं। और उन्होंने उन डाकुओं को इस बात का आश्वासन भी दिया कि फिल्म के जरिए वो दुनिया को बताएंगे कि कोई भी इंसान जन्म से डाकू नहीं बनता, बल्कि उसके हालात उसे ऐसा बनाते हैं। डाकुओं के सरदार ने उनकी बात सुनी, उन्हें मानी और न सिर्फ उन्हें शूटिंग करने से रोका, बल्कि उन्हें वादा किया कि जब तक उनकी फिल्म की शूटिंग चंबल में चलती रहेगी तब तक उनका पूरा गिरोह उनकी यूनिट की और उनकी सुरक्षा करता रहेगा, पहरेदारी करता रहेगा। और फिल्म जब जानते हैं मुझे जीने दो बनकर तैयार हुई, तो सुनील दत्त ने एमपी गवर्नमेंट से विशेष परमिशन लेकर ग्वालियर की जेल में बंद जो कैदी थे या फिर जो सरेंडर कर चुके डाकू थे उनको दिखाने के लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग भी कराई थी। क्या बात है। चलिए अब इस फिल्म का गीत तो नहीं, लेकिन एक और बहुत सुंदर गीत सुनवाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दें।
1: दिस इज रितु शर्मा। Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays, like a gold in London, the Midlands and Manchester.
0: चलिए आपको बता दें कि अगर आप किशोर कुमार के फैन हैं तो आप जा सकते हैं क्रेजी फॉर किशोर शो को देखने के लिए। एक स्पेशल म्यूजिकल नाइट है फीचरिंग जॉय, इंद्राणी, संजय विद हेनल एंड 515 बैंड, और ये सब होने जा रहा है फ्राइडे 19 जून को एट द प्रिंस रीजेंट होटल चिगवेल एसेक्स में। टिकट्स अवेलेबल है एट eventbrite.co.uk पर, या फिर उन्हें कॉल कीजिए ऑन 0208-514-5400 पर। और आपको बता दें कि लाइका गोल्ड इस प्रोग्राम के एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स हैं।
1: लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट।
0: और अगला गीत सुनवाने से पहले आपको ये भी बता दें कि नया एपिसोड आ चुका है लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट का। उसका टाइटल है लिव इन रिलेशनशिप, जिसे होस्ट किया है रेडियो वाणी ने। आप लाइका एक्स्ट्रा सुन सकते हैं यूट्यूब, अमेज़न, एप्पल और स्पॉटिफाई पर जाकर।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app or log on to leicaradio.com and listen via the website. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio.
2: City Bond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
3: Discover Kailash Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Old Delhi Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
2: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra tour.
3: Also explore 2026 cruises
2: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call Citybond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
4: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
5: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
4: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
5: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
4: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
5: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
4: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
6: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money, send joy. Western Union makes money from currency exchange.
7: Har case mein kam se kam ek witness to hota hi hai. Murderer khud.
8: Kolkata mein hamare gharon ke aas paas ye sab ho raha hai. I'm Dr. Sandeep Chakraborty, owner psychiatrist.
9: One more gruesome murder.
7: Dono victims 20s mein, dono female. He's not going to stop. There are many more in danger.
10: Be part of a historic grand opening.
11: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
10: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
11: Departure 5th of September. Call now on 02-03-773-633.
10: Mantra Holidays. What's your travel mantra?

0: रफी साहब की आवाज में एक और बहुत ही सुंदर सा गाना जो पिक्चराइज किया गया था नंदा और सुनील दत्त पर, और आज हम सुनील दत्त को यादें में याद कर रहे हैं। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, और जो सुनील दत्त को जानते हैं वो उनके बारे में सिर्फ यही कहते हैं कि वो सिर्फ पर्दे के ही नहीं बल्कि असल जीवन के भी हीरो थे। एक बहुत ही संवेदनशील और देशभक्त इंसान थे। आपको बता दें कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे, उन्होंने इलेक्शंस लड़े थे और वो सांसद भी रहे थे। 5 बार उन्होंने सांसद का चुनाव जीता था, और 2004 में जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने उन्हें युवा मामले और खेल मंत्री उन्हें बनाया गया था। उन्होंने 1987 में जब पंजाब में आतंकवाद चरम पर था तब उन्होंने मुंबई से अमृतसर यानी स्वर्ण मंदिर तक करीब 2000 किलोमीटर की महाशांति पदयात्रा की थी, जिसका उद्देश्य देश में अमन और भाईचारा कायम करना था। और अपनी पत्नी नरगिस जी की कैंसर से मृत्यु के बाद उन्होंने नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की और कैंसर मरीजों के इलाज के लिए बड़े पैमाने पर काम किया। उनके इस काम के लिए, उनके सहयोग के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, और फिर उन्हें 1995 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। इसके अलावा उन्होंने बहुत बार फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। फिल्म मुझे जीने दो, जो डाकुओं पर फिल्म थी, और खानदान, जिसके की गीत कमाल के हैं, आज शायद बजा पाऊं, देखती हूं, उसके लिए भी उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। और 25 मई यानी कि लास्ट मंथ हार्ट अटैक होने से उनका देहांत हो गया था। लेकिन आज हम उन्हें यादें में याद कर रहे हैं। आज उनका जन्म दिवस, आज के दिन बॉर्न हुए थे। एक और खूबसूरत सा गीत आने वाला है आपसे बस थोड़ी ही देर में।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 pound आपको देगा 126 भारतीय रुपए, 371 पाकिस्तानी रुपए एंड 163 बांग्लादेशी टकास।
2: Like her radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKER. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LIKER Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKER Radio.
0: So gold rate is 104.7 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278. Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma. Ye hai Laika Radio.
3: इतना सस्ता डील देखा है कभी?
4: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
3: समारा ब्लैक टी 1 kg 3.99, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 3.99, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 1.99, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 ग्राम 1.99, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश एंड कैरी
4: 82 Assistant Street LE12JU या Rowlett Hill LE54UN.
3: Big deals, big savings while stocks last.
5: Surinderella is back for 2026. Beck Theatre Hayes, 22nd and 23rd of July. Arts Depot Barnet, 17th and 18th of October. Theatre Royal Stratford East, 20th to the 31st of October. With smash hit music by the hitmaker PBN, Surinderella is guaranteed dizzy panto fun for all the family. And with tickets starting from £15, click rivcotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Surinderella goes back into the Bollywoods.
6: Radio partner, Laika Radio. भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
7: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
6: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
7: गारंटेड
6: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
7: 02085748410।
6: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
8: तुम्हें दिल लगी।
9: The timeless soul of Qualy returns to the stage.
10: Presenting Bismil Ki Mehfil UK Tour 2026 live in London.
9: Featuring Bismil, India's biggest Sufi sensation.
10: Known for his soul-stirring voice, electrifying live performances and the modern revival of the Mehfil experience.
9: Join us for a mesmerizing night of soulful music and the magic of a true Mehfil.
10: On Sunday the 7th of June at Hackney Empire.
9: Book your tickets now at zeppelinentertainment.com. Exclusive radio partner, Leica Radio.
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
11: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
12: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas, Greens, start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
11: High appreciation.
12: In Dubai.
13: Aji aisa mauka phir kahan milega.
14: Maharaja Tours la rahe hain Captivating China 2026. Shanghai, Beijing, Xi'an aur Chengdu ka unforgettable safar. Great Wall, Terracotta Warriors, high speed trains aur adorable pandas. Flights, hotels, Indian khana aur guided tours. Sab included. From £3,299 per person, visit maharajatours.co.uk. UK, ya call 07956-154-846.
15: Pepe's Piri Piri is firing up its 258th store at 3 Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton 3 Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.
16: जिसको सबकी खुशी का है ख्याल, क्या है उसके दिल का हाल?
17: Anupama, Monday to Sunday at 8:30 PM, only on Utsav Plus. Utsav Plus, Sky Channel 705, Veggie Media 803 and EE 392.
18: Presented by South Hall Travel, powered by Tata Tea Premium and Well Man and Well Woman by Vita Biotics.
1: Miss your favourite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. This is the largest commercial Asian radio network show, featuring classics non-stop with Ritu Sharma on Leica Radio.

इस फिल्म के लिए सुनील दत्त साहब को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला था, और ऐसी और भी बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें उन्होंने बहुत ही खूबसूरत काम किया। और हमारे एक साथी जानना चाहते हैं कि आपने नरगिस दत्त के इंटरव्यू वाला किस्सा नहीं सुनाया। हाँ, क्योंकि समय कम था, लेकिन आप जानना चाहते हैं तो मैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में वो किस्सा, इंटरेस्टिंग किस्सा जरूर सुनवाऊंगी। लेकिन फिलहाल तो एक और गाना बजाने वाली हूँ जो उनकी ही सुपरहिट फिल्म से लिया है, और ये गाना हमें लेकर चलेगा न्यूज तक। मिलेंगे आपसे न्यूज के उस पार, एंड प्रॉमिस वो किस्सा जरूर सुनवाऊंगी। This is Leica.

आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में वक्त फिल्म से था ये गाना, जिसमें सुनील दत्त हीरो थे और उससे पहले काला पत्थर फिल्म का गीत मैंने आपको सुनवाया। आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद रेडियो, ये है प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल आवर और इस आवर में हम खेलते हैं थ्री वर्ड्स गेम और बजाती हूँ मैं आपके लिए कुछ ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक्स भी। लेकिन उससे पहले जरूर वो किस्सा सुनाऊंगी जिसके बारे में कुछ साथियों ने कहा है कि आपने कहा था और बताया नहीं क्योंकि समय नहीं था। तो जरूर बताती हूँ कि आज यादें में हमने सुनील दत्त को याद किया है, आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी। और मैंने ये भी बताया कि सुनील दत्त फिल्मों में आने से पहले एक रेडियो जॉकी थे, रेडियो प्रेजेंटर थे और उनका शो था जिसमें वो उस जमाने की मशहूर हस्तियों का इंटरव्यू लिया करते थे। और सुनील दत्त नरगिस जी के बहुत बड़े फैन थे और जब एक बार उन्हें पता चला कि नरगिस जी का उन्हें इंटरव्यू लेना है, क्योंकि नरगिस जी उस समय बहुत बड़ी स्टार थी, और सुनील दत्त को जब पता चला कि उनका इंटरव्यू लेना है तो वो बहुत एक्साइटेड हो गए और उतने ही ज़्यादा घबराए हुए भी थे क्योंकि नरगिस उनकी फेवरेट एक्ट्रेस थी और उन्होंने उनके इंटरव्यू के लिए बहुत तैयारी की थी, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए थे कि जब वो आएंगी तो मैं ये पहनूंगा, ये पूछूंगा, ऐसे स्माइल करूंगा, ये सब तैयारी। लेकिन जैसे ही नरगिस जी स्टूडियो में आई, सुनील दत्त के सामने बैठी, सुनील दत्त उन्हें देखकर सब कुछ भूल गए। उनकी खूबसूरती और उनके स्टारडम का सुनील दत्त पर ऐसा असर हुआ कि जो इंसान अपनी शानदार आवाज और बेबाक बातचीत के लिए जाना जाता था उसकी बोलती बंद हो गई। सुनील दत्त को नरगिस जी से सवाल पूछने थे लेकिन घबराहट के मारे उनका मुंह तो जैसे जम गया था, उनके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था, एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। वो बार बार अपनी स्क्रिप्ट देखते लेकिन जैसे ही नरगिस जी की तरफ देखते सवाल भूल जाते। कुछ देर तक तो नरगिस जी बैठी रही, उन्होंने सोचा कि शायद थोड़ा माहौल ठीक होगा, शायद ये मुझसे कुछ सवाल पूछेंगे। लेकिन सुनील दत्त एक भी सवाल नहीं पूछ पाए और आखिरकार उस इंटरव्यू को कैंसिल करना पड़ा। कहते हैं ना कि जोड़ियां आसमान में बनती है, लेकिन इस नाकाम इंटरव्यू के बाद उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि जिसके सामने उनकी बोलती बंद हो गई थी उन्हीं से उन्हें शादी रचाने का मौका मिलेगा। मदर इंडिया में दोनों ने साथ में काम किया और सेट पर आग लगी। हम जानते हैं सुनील दत्त ने अपनी जान की परवाह किए बिना नरगिस जी को आग से बाहर निकाला, काफ़ी जल भी गए थे, लेकिन इसके बाद दोनों ने शादी रचाई और बहुत ही प्यार से अपना जीवन बिताया। हालांकि उनके बाद का जीवन काफ़ी दुखों से भरा रहा जिसके बारे में भी बहुत सारी बातें हैं, पर अब समय नहीं है, किसी और दिन उस बारे में बात करूंगी, क्योंकि फिलहाल मुझे आपको बताने हमारे आज के थ्री वर्ड्स। इस आवर में हम थ्री वर्ड्स गेम खेलते हैं, तो आप सब तैयार हैं? और जो पहली बार प्रोग्राम को सुन रहे हैं उनको बता दूँ कि मैं ऋतु शर्मा, और थ्री वर्ड्स में क्या होता है, थ्री वर्ड्स में हम एक बॉलीवुड के किसी गाने से पहली तीन चार लाइन से तीन वर्ड्स पिक करते हैं और आपको उनसे उनकी हेल्प से पहचानना होता है कि गाना कौन सा है। तो मैं बताती हूँ आज के जो वर्ड है उनमें पहला वर्ड है रोशनी, अरे हमारी लिस्टनर नहीं, वर्ड है रोशनी। दूसरा वर्ड है प्यार और तीसरा है झूमती। मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले की आवाजें हैं, 1967 की फिल्म है और शंकर जयकिशन का म्यूजिक है।

0: क्रिएटिव
1: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
2: ऑन द 5th ऑफ जून.
3: Lester Mellor इज बैक विद एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर Lyca Radio. August 15th and 16th at Abbey Park, Leicester.
4: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events.

0: इंदी वर का लिखा हुआ ये गाना किशोर दा की आवाज में फिल्म कलाकार से लिया था और अमित कहते हैं कि उन्हें फीमेल वर्जन पसंद है या फीमेल वर्जन को साधना सरगम ने गाया है, वो भी बहुत सुंदर गाना है, किसी और दिन आपको सुनवाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि इंदीवर जो उनका पेन नेम था लेकिन असल नाम श्याम लाल बाबू राय, जो कि झांसी उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे, हमारे इस बार के आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं और उनके गाने प्रोग्राम में आपको सुनने को मिलते ही रहेंगे हर शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का सिलसिला, लेकिन उससे पहले आपको तीन वर्ड्स बता दें। हमारे कुछ साथी कहते हैं कि एक बार रिपीट कर दीजिए, तो चलिए पहला वर्ड है रोशनी, दूसरा वर्ड है प्यार और तीसरा वर्ड है झूमती। रफी आशा जी की आवाजें हैं, 1967 की फिल्म है ये और शंकर जयकिशन का म्यूजिक है। बहुत सारे साथियों ने सही जवाब दे दिया है और आप भी दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का सिलसिला, सुनवाते हैं आपको पहला गाना।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley,
2: soft and tender like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: The Ritu Sharma Show on Leica Radio. Leica Radio.
2: बिल्कुल, आज के ब्लैक एंड वाइट क्लासिक का पहला गाना फिल्म सहेली से लिया था, जिसमें लता जी और हेमंत कुमार की आवाजें थी। चलिए सुनवाते हैं आपको आज के ब्लैक एंड वाइट क्लासिक का दूसरा गाना।
0: दिस इज रितु शर्मा।
3: दिस सुपर हिट ट्रैक इज ब्रॉट टू यू बाय टिल्डा बासमती राइस। विद अ रेंज ऑफ ग्रेन्स एंड फ्लेवर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, यू कैन मेक एवरी मील मेमोरेबल।

ये थी आवाजें मन्ना डे और लता मंगेशकर की। अपने जमाने की सुपरहिट फिल्म चोरी चोरी से लिया था आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना। और हमारी फरीदा जी कहती हैं कि ये दोनों गाने रितु मेरे नाम कर दो। लीजिए, मैंने आपके नाम पर किए और उन सभी के नाम पर किए जो इस तरह के गीतों को सुनना पसंद करते हैं। और अब बात कर लेते हैं आज के थ्री वर्ड्स गेम की। बहुत सारे साथियों ने सही जवाब दिया है और जिन्होंने सही जवाब दिया है उनमें सबसे पहले नाम है अजाज जी आपका चैशम से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। उल्लास टोरंटो से सही बताया है आपने। विजय गुडोरी जी और आंसर इज करेक्ट। नरेन पटेल, भरत गंगा राम जी, रजनीश गुरुशरण, कर्सन पिंडोरिया जी, गिरीश जी, नीलकंठ वॉकिंगम से, विद्युत जी, सहर जी, हाजरा जी, मितुल पटेल एंड शुमिला मंगर, आप सभी का जवाब बिल्कुल सही है। और जासू जी कहती हैं मेरा पसंद का गीत है मेरे भी नाम करो। चलिए, हमने आपके भी नाम किया। एंड मितुल पटेल, आप एक गीत सुनना चाहते हैं और आज प्रोग्राम में इतनी जगह नहीं है कि वो गाना शामिल कर सकूं, लेकिन आई प्रॉमिस आप मुझे याद दिला दीजिएगा। आने वाले शोज में आपकी पसंद का गीत जरूर बताऊंगी, क्योंकि जब भी कोई किसी गाने की रिक्वेस्ट करता है तो वो रहता है मेरे दिमाग में और मैं कोशिश करती हूँ कि जल्द से जल्द उसे अपनी प्लेलिस्ट में शामिल करके आपको सुनवा दूँ और काम खत्म कर दूँ। एनीवेज, तो चलिए, सबने सही आज के थ्री वर्ड्स गेम को पहचान लिया है तो देर किस बात की है, सुनाते हैं आपको वही गाना अब से बस थोड़ी ही देर में। Holiday breaks are brought to you by Southall Travel. लेकिन उससे पहले याद दिला दें कि भाई हॉलीडे जाना चाहते हैं, समर टाइम है, तो याद रखिए साउथहॉल ट्रैवल को। 40 सालों से आपकी सेवा कर रहे हैं और ब्रिटिश ट्रैवल अवार्ड भी जीत चुके हैं। विजिट कीजिए साउथहॉल ट्रैवल को, उन्हें कॉल कीजिए 0208-574-8410 पर और अपनी हॉलीडे डील्स बुक कराइए। दैट्स इंक्लूड्स फ्लाइट्स, होटल्स एंड एवरीथिंग एट ऑल प्रोटेक्टेड।

0: Disha Free Rice Tasting at S&D Supermarket, 169-171, Soho Road, Birmingham, B21 9SU. Come along this weekend from 10am to 5pm and enjoy free veg dum biryani tasting, plus a special in-store offers on Disha Rice and more.
1: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
2: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ। आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे, जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद, अने साथे आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो। डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज। कॉल करो 0203-773-6333। मंत्रा हॉलिडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।
3: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
4: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें Leica Radio Sales ऑन 0116-471-0697 या ईमेल करें sales@leicamedia.co.uk. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: फाइन इवनिंग इन पेरिस। मोहम्मद रफी साहब और आशा जी की आवाजों में ये गाना था हमारे आज के थ्री वर्ड्स गेम वाला गाना, जिसे ज्यादातर सभी साथियों ने बिल्कुल सही सही पहचान लिया है।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोका नूडल्स, क्विक टेस्टी हेल्दी फ्लेवर्स, परफेक्ट फॉर माई बिजी डे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
2: ये है लाइका रेडियो।
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 पाउंड आपको देगा 126 भारतीय रुपए, 371 पाकिस्तानी रुपए एंड 163 बांग्लादेशी टका।
2: Leica Radio.
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits. Gold Rate is brought to you by Ram Jewellers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: So Gold Rate is 104.7 pounds per gram.
3: Ram Jewellers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewellers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
2: Leica Radio.
3: This is Leica Radio.
0: जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ये है लाइका गोल्ड। और अब मेरा समय हो गया है आपसे बाय कहने का। अगला गीत हमें लेकर चलेगा न्यूज तक, और न्यूज के उस पार लाइका गोल्ड पर अनुराग होंगे आपके साथ, लाइका रेडियो मैनचेस्टर पर फजीला होंगी आपके साथ एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर अनिका आपके साथ होंगी। लेकिन आपको याद दिला दूं कि अगर इस शो को आप दोबारा सुनना चाहते हैं तो लिसन बैक पर जाकर इस शो को दोबारा सुन सकते हैं, और अगर आप नॉन स्टॉप क्लासिक सुनना चाहते हैं तो लाइका गोल्ड है आपके लिए, ऑनलाइन सुन सकते हैं। 90s के गीत को भी आप लाइका रेडियो ऑनलाइन 90s पर सुन सकते हैं, और पंजाबी गीतों के लिए भी है लाइका रेडियो पंजाबी ऑनलाइन। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो मर्जी सुनिए, इंजॉय कीजिए, मौसम भी अच्छा है, और बस मुझे कह दीजिए बाय। कल होगी आपसे फिर से मुलाकात, लेकिन जाते आते आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस भिजवाए और शो में मेरा साथ दिया। ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं कल आपसे फिर से। टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो।
4: हेलो हेलो हेलो, वेक अप विद मी काजल ऑन द ब्रेकफास्ट शो, वेयर आई टेक यू डाउन मेमोरी लेन, गेट इंस्पायर्ड बाय मॉर्निंग मंत्रा, मंडे टू फ्राइडे 6 AM टू 10 AM, लाइका गोल्ड एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स।
3: लाइका रेडियो।
5: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
6: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
5: समारा ब्लैक टी 1 kg

0: 399 Elephant Medium Atta 25 kg 14.99 Falcon Brown Sugar 3 kg 3.99 Lela Basmati Rice 10 kg 11.99 Suhana Khaman Dhokla 500 gram 1.99 Falcon Red Lentils 1.5 kg 24.399 Parle G Multipack Biscuit 7.99 gram 1.99 Falcon Lemon Juice 250 ml 3 for 1 Falcon Cash and Carry
1: 82 Assistant Street LE12JU Ya Rowlett Hill LE54UN
0: Big Deals Big Savings While stocks last.
2: Maharaja Tours presents Diwali Dhamaka 2026. 13-night Diwali or Navratri cruise on MSC Virtuosa. Bhajan jamming, Mehfil nights, Ras Garba, Bollywood entertainment or full-on maza. Spain or Portugal ke sunshine ports, full board cruise or Indian khana included. From only £1,179 per person, visit maharajatours.co.uk ya call 07956154846.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स लागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
4: हर केस में कम से कम एक विटनेस तो होता ही है मर्डरर खुद
5: कोलकाता में हमारे घरों के आसपास ये सब हो रहा है आई एम डॉक्टर संदीप चक्रवर्ती ओनर साइकियाट्रिस्ट
6: वन मोर ग्रूसम मर्डर
4: दोनों विक्टिम्स 20s में दोनों फीमेल ही इज नॉट गोइंग टू स्टॉप देयर आर मेनी मोर इन डेंजर
0: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
0: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
0: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
0: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02039635757 Greens by Danu Prime location
0: High appreciation
7: In Dubai
8: Mum always said Beta, clove and neem keep the mouth healthy Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath Over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste Fresh breath, strong gums, pure herbal care Siddhayu Now available in Falcon Cash and Carry Leicester and Nottingham Siddhayu Ayurveda that fits your life
9: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favorites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
10: Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit HartyHanks.com today. Harty Hanks. Build your future before someone else does. Visit HartyHanks.com today.
11: मेरे पापा को गुलाब जामुन बहुत पसंद है
12: ऑर्डर ऑनलाइन एट pujasweets.com फ्रॉम बर्फी लड्डू गुलाब जामुन टू समोसा एंड गाठिया फ्रॉम केटरिंग स्टार्टर्स टू डिजर्ट पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज
13: अभी कॉल कीजिए 01162021222 और विजिट मेल्टन रोड LE45EA
12: पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज
14: वीकेंड मस्ती विद Anika ऑन Leica रेडियो मिडलैंड्स Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

0: ketchup-free rice tasting at S&D Supermarket, 169 to 171, Soho Road, Birmingham, B21 9SU. Come along this weekend from 10 a.m. to 5 p.m. and enjoy free veg dum biryani tasting, plus a special in-store offers on Disha Rice and more.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
1: high appreciation
2: in Dubai.
3: हर केस में कम से कम एक विटनेस तो होता ही है, मर्डरर खुद।
4: कोलकाता में हमारे घरों के आसपास ये सब हो रहा है। I'm Dr. संदीप चक्रवर्ती, own a psychiatrist.
5: One more gruesome murder.
3: दोनों विक्टिम्स 20s में, दोनों फीमेल। He's not going to stop. There are many more in danger.
6: क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
7: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाकरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
6: जयमिन फूड्स, देसी क्रेविंग्स, अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
8: Save the date, Friday 3rd to Sunday the 5th of July, and Indian summer is back.
9: Presented by Inspirate, exclusive radio partner, Leica Radio Midlands.
8: For sponsorship inquiries, call Leica Radio on 0116 471 0697.
9: Or sales at leicamedia.co.uk.
10: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
11: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. That's 020-3773-633. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
12: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर। ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी। लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS। कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड वेम्बली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर लेस्टर में।
13: Punjab, the biggest tunes,

0: Ben. Or sales at leicamedia.co.uk.
1: ZTV HD पर देखिए साहस और जज्बे की नई कहानी
2: जगदात्री,
1: जिसमें माँ गौरी की सरलता बसती है।
2: माला ले आना। लाया जी।
1: वो वक्त आने पर महिषासुर मर्दिनी भी बन जाती है।
3: टीम, get ready for the action।
1: जिसके शांत स्वभाव में भी छिपा हो शेरनी का रूप, वो है जगधात्री। देखिए रोज रात 8:30 ZTV HD और Z5 पर, अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394।
4: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर। यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स। सबके लिए कुछ न कुछ है। 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS पर। चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ, कॉल कीजिए 0116-332-5100। एग जंक्शन, जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में, जहां हर बाइट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी।
5: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
6: इन रियल एस्टेट, लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर।
5: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियल, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
6: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन।
5: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स।
6: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: Bollywood's biggest 90s songs non-stop.

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June.
2: बी पार्ट ऑफ अ हिस्टोरिक ग्रैंड ओपनिंग
3: एक्सपीरियंस द न्यूली इनॉग्रेटेड BAPS स्वामीनारायण मंदिर इन पेरिस अ वंस इन अ लाइफ टाइम स्पिरिचुअल जर्नी
2: ट्रेवल विद योर फैमिली एंड विटनेस दिस डिवाइन ओकेजन अलोंग विद द आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज एंड अ पेरिस सिटी टूर
3: डिपार्चर 5th of September कॉल नाउ ऑन 0203-773-633
2: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
4: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
5: Bollywood's biggest 90s songs.

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून.
2: लेस्टर मेला इज बैक विद एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो ऑगस्ट 15th एंड 16th एट एबी पार्क लेस्टर. ये है लाइका गो.

0: देखिए एक नई मोहब्बत की दास्तां, तुमसे तुम तक, हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: अभी ना, यहाँ से मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। क्या तुम मेरे साथ? ये फैसला मेरा था, भुगत तुम रही हो। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ।
2: अगर हम साथ हैं
1: तो जिंदगी की हर मुश्किल को हरा देंगे।
3: खुशियों को लगी वक्त की नजर, कैसा होगा अबीरा अरमान का नया सफर?
4: ये रिश्ता क्या कहलाता है? मंडे टू संडे 7 PM ऑन स्टार प्लस, अवेलेबल ऑन स्काई 705, वर्जिन मीडिया 803-EE392 एंड अप टीवी, प्रेजेंटेड बाय travelup.com, पावर्ड बाय नेटको फूड्स।
5: दिस इज द लार्जेस्ट कमर्शियल एशियन रेडियो नेटवर्क इन द UK, 7 स्टेशंस, 1 पॉडकास्ट, 1 मोबाइल ऐप। Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales at leicamedia.co.uk.
6: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ। मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच, मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा।

0: ये जो चिलमन है, दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी महबूब की मेहंदी, काका जी एंड लीना चंद्रवर्कर के बीच क्या ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री थी. वन मोर ट्रैक दिस आवर एंड आई विल बी विद यू नेक्स्ट आवर.
1: Zyka Radio, part of the largest Asian commercial radio network in the UK.

0: तुम कम सिन हो, रफी साहब की आवाज. आई थिंक दिस सॉन्ग वाज सो एप्ट फॉर सायरा बानो जी. आई थिंक शी वाज सो ब्यूटीफुल इन दिस मूवी एंड राजेंद्र कुमार एंड उनकी केमिस्ट्री वाज लाइक अमेजिंग.
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Sarita Sabharwal with the biggest classics on Leica Radio.

जी हाँ, मुंगड़ा मुंगड़ा. अच्छा, डू यू नो व्हाट मुंगड़ा मीन्स? वेल, इफ यू नो व्हाट मुंगड़ा मीन्स, देन मैसेज मी. इट इज अ मराठी वर्ड एंड इन मुंबई वी यूज्ड टू यूज दिस क्वाइट ऑफ्टन. दिस लवली ट्रैक इन द वोकल्स ऑफ उषा.

0: से गाड़ी जब छूट जाती है तो
1: और भी हसीन हो जाती है. दिस लवली ट्रैक इन द वोकल्स ऑफ किशोर दा फ्रॉम द सुपर डुपर हिट मूवी शोले. आई थिंक धर्म जी एंड इमाम अली वर सुपर्ब इन द सॉन्ग. वन मोर लवली ट्रैक दिस आवर, अ सुपर रोमांटिक ट्रैक इन द वोकल्स ऑफ आशा भोसले एंड मोहम्मद रफी. एंड आई विल बी विद यू नेक्स्ट आवर. स्टे ट्यून्ड ऑन लाइक अ गोल्ड.
2: Another huge giveaway is coming. Like a radio network.

0: पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
1: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
0: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
2: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
3: 7 स्टेशंस, 1 podcast, 1 mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales at leicamedia.co.uk.
4: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
3: We laugh, we love, we vibe together. With Sonia, it's always better.
5: Now, the next song coming up, it has been specially selected for Dav. Listening in just now, he has been ill for a couple of Saturdays. Because normally he's our top texter. But Jada, this song for you, Dav. Get well soon and get hyperactive again. Here we go.

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June.
2: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Bollywood's biggest 90s songs, non-stop.

0: This is Leica Radio.
1: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
2: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
1: Oh, I'm on Simsy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
2: And you didn't pay those massive roaming charges?
1: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
3: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simsy app today. Simsy, your global flow. T's and C's apply.
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
5: गारंटेड
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
5: फोन 02085748410।
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
6: Transfer £1,000.

0: Listen to Laika Gold 2 on Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Gold 2.
1: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
2: अपने बिजनेस को UK के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें Laika Radio Sales on 0116-471-0697 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.
3: Easing you through the night with the Midlands' biggest Asian hits on Laika Radio.

0: है लाइका रेडियो टीवी एंड सी फाइव प्राउडली प्रेजेंट हमारे राम प्रोड्यूस्ड बाय फेलिसिटी थिएटर इंडिया और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ हमारे राम बुक योर टिकट्स नाउ विजिट www.eventimapolo.co.uk एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो
1: वेडिंग सेलिब्रेशन कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
2: ट्रांसफर मनी होम एंड टर्न एवरी ट्रांसफर इन टू chance to win while making your money go even further with SBI UK.
3: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
2: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
3: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
2: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
3: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
2: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
4: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money, send joy. Western Union makes money from currency exchange.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
5: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: 8 days to go. Get ready to sing along with Atif Aslam live at the O2 on the 14th of June. Tickets available at AXS. Exclusive radio partnership, Leica Radio.
0: ये है लाइका गोल्ड

0: Listen to Laika Gold 2 on Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Gold 2.
1: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी।
2: हमारे पति हमको छोड़ दिए।
1: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया।
2: दिल तो टूट भी गया,
1: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी।
3: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती।
1: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394.
0: The sounds of love across the Midlands. This is Laika Radio.

0: ऐ मेरी हमरक्स मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।